0: सौंदर्यात्मक वियमन
1: संतदीय तहरा आय मिलन के बेला एक दसन से हट हाथर दी तेरे कथ वेन्नी हम वी में मोहतेल मिला मोहन कुमार अध्यक्ष ने कल में चित्रपाट शंकर जयकिशन तमाय संगीत अध्यक्ष ने कले राजेंद्र कुमार सैरभ बानो धर्मेंद्र सह शशिकला रंगने ने कुना इतने ना सुंदर गीत गरनावा कतला तनु आई मिलन के वेला चित्रपाटे अभी अहान में गीत मोहम्मद रफी तमाय गायने तुम कम सिंह हो नदान हो हसरत जयपुरी गीत ले
0: संद दिए तहार
2: तुम

भावे शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तिरिसंगत सतुन्गें सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु वेवा।